0: अध्यात्म दर्शनमाथि आधारित कार्यक्रम अर्चनापछि अब रिलिज गरिरहेछौँ दिल्ली केन्द्रका संस्कृत र हिन्दीमा समाचार।
1: आशावाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। न्यूयॉर्क नगरे आयोजितायाः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81तम सत्रस्य उच्चस्तरीय उपवेशने भारतेन रंगभेदस्य, प्रजातीय विभेदस्य, परदेशी द्वेषस्य तथा तत्सम्बद्धानां असहिष्णुतानां उन्मूलनार्थं स्वकीया असंदिग्धा प्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता। DDPA इति दुर्बन घोषणा तथा कार्ययोजनायाः अंगीकरणस्य

0: षष्टतितमवार्षिकस्य स्मरणावसरे भारतस्य आधिकारिकं वक्तव्यं वितरता विदेशकार्यमन्त्रालयस्य सचिवेन सीबी जॉर्ज इत्यनेन जागतिकसमतायाः मानवप्रतिष्ठायाः च संवर्धनार्थं भारतस्य पक्षः प्रकटीकृतः। विदेशकार्यमन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन उक्तं यत् सचिवेन सर्वेषां कृते समानतायाः गौरवस्य च संरक्षणार्थम् अमोघसंकल्पः पुनः सम्प्रख्यापितः। ओएनजीसी इत्यायोगस्य अन्वेषणनिदेशकः ओमप्रकाशसिंहा सम्प्राह यत् E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल इन्धनं वैदेशिकतैल आयातम् अधिकमात्रायां घटयित्वा देशस्य आत्मनिर्भरतां वर्धयिष्यति। अहमदाबादे भारत ऊर्जा सप्ताह 20-27 इत्यस्य पूर्वालोकन प्रसंगे भाषमाणः सः अवोचत् यत् E20 इन्धनम् एकं समाह्वानम् अस्ति, किन्तु आधुनिक प्रविधिना अस्य परिहारो भविष्यति। सः स्पष्टं न्यगादीत् यत् पश्चिमैशिया युद्धस्य कारणात् जगति देशैः वैदेशिक निर्भरता न्यूनीक्रियते। अस्मिन् काले भारतस्य वर्धमानाम् ऊर्जा आवश्यकताम् विचार्य भारतोर्जा सप्ताहः एका प्रमुखा पीठिका वर्तते। भारतीय रेल विभागेन पूर्वोत्तर रेल विभागस्य वाराणसी मण्डले 14,600 किलोमीटर परिमिते क्षेत्रे कवच 4.0 इति प्रणाल्याः स्थापनायै 23,200 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। अनुमोदितया परियोजनया वाराणसी मण्डलस्य चिह्नितेषु अवशिष्टेषु खण्डेषु कवच 4.0 इति प्रणाल्याः विस्तारो भविष्यति, येन रेल परिचालनाय उपलब्धं सुरक्षातन्त्रं सुदृढं भविष्यति। उपक्रमोयम् अधिक सुरक्षितं विश्वसनीयं च रेल परिचालनं सुनिश्चेतुं तथा सम्पूर्णे भारतीय रेलजाले स्वदेशीय कवच प्रौद्योगिक्याः विस्ताराय क्रियमाणानां प्रयासानां समर्थनं करिष्यति। भारतेन स्वीय वस्तूनां सेवानां च आहत्य निर्यातस्य परिमाणं 63.8 बिलियन डॉलर परिमित धनात् वर्धयित्वा 1 ट्रिलियन डॉलर परिमितं विधातुम् उच्च लक्ष्यं विनिर्धारितम्। ह्यः मुम्बय्यां सञ्जातस्य भारत संयुक्त अरब अमीरात निवेश संबंधी उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबलस्य 14th उपवेशनानन्तरम् अस्य ऐतिहासिक लक्ष्यस्य घोषणाकारी। वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूष गोयलेन प्रोदीरितं यत् जागतिक संकटेषु सत्यपि प्रवृत्तस्य वित्तीयवर्षस्य प्रथम षट्मासेषु पण्यनिर्याते 15% अधिकं वृद्धिः समवापि। जापानदेशस्य आइची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदकप्राप्तिक्रमः ह्यः अपि अनुवर्तितः। लक्ष्यवेधक क्रीडा क्रिकेट कुराश मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीय क्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। भारतेन पदकसंख्यायाम् 8 पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। पुरुषाणां कुन्तक्षेप स्पर्धायां भारतस्य 2 पदके प्राप्ते। यशवीरसिंहेन रजत पदकं तथा रोहित यादवेन कांस्य पदकम् अवाप्तम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्र हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को और मजबूत करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस बुधवार से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तु, कृषि कारोबार, खुदरा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे कारोबारियों, स्टार्टअप और नवोन्मेषी कंपनियों के साथ परिचर्चा में भी हिस्सा लेंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि UAE ने भारत में अब तक करीब 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और जल्द ही 25 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश भी करने जा रहा है। हमारा दीर्घकालिक निवेश का लक्ष्य 100 अरब डॉलर है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CV जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत, 21 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और पीयूसी प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से

0: में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
1: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए

लंदन की लड़की नाना अमरीकन गोरी नाना लंकन की छोरी नाना पेरिस की पोरी नाना इंडिया आहा नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट।

0: यहाँ की लड़की वाह, बदन पे साड़ी वाह, माथे पे बिंदिया वाह, कानों में बाली वाह, पैरों में पायल वाह, होठों पे लाली वाह, हाय भोली भाली वाह, हाय शर्मीली वाह।
1: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।
0: ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा, सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भारतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा यहाँ दिवाली बाबा यहाँ की होली बाबा दुल्हन की डोली बाबा चनिया चोली बाबा मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: Rajesh Shivaji Baba, Akbar Basha Baba, Mahatma Gandhi Baba, Chacha Nehru Baba, Baba Ambedkar Baba, Mother Teresa Baba.
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: Taj Mahal Baba, Char Minar Baba, आम का अचार बाबा यहाँ का प्यार बाबा ऐश्वर्या राय बाबा सुष्मिता सेन बाबा ऑल इंडिया रेडियो बाबा डीडी मेट्रो बाबा दूरदर्शन बाबा यहाँ की आर्मी बाबा यहाँ की नेवी बाबा।
1: So come on everybody in India, come on now you know I'm telling you, come on everybody in India, come on welcome to India।
0: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
2: सारे जहाँ से अच्छा हमारा,
0: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।
1: कम ऑन लेट मी हियर यू से
2: I-N-D-I-A,
1: कम ऑन एवरीबॉडी से
2: I-N-D-I-A,
1: इंडिया love you, India, for me and you, India, from the bottom to the top, India, India, you cannot stop, India, let me see your smile, India, I love that style, India, it's happening now, India, India, we are so proud.

0: सुन्दै हुनुहुन्छ आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्र एफएम 103.5 मेगाहर्ज र अबको केही बेरमा समप्रसारण गरी सुनाइरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे राष्ट्रीय समुद्री हितों और नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य तीनों सेना के बीच समन्वय और एकीकरण को और मजबूत करना है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की फ्रेम्स 2026 की शुरुआत आज मुंबई में होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का विषय है इंडियाज मीडिया मूवमेंट और क्रिएटिंग वैल्यू का निर्माण।
2: केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के अम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र में फिक्की फ्रेम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा, जो फिक्की के पूर्व अध्यक्ष और जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर को दिया जाएगा। कार्यक्रम में भारत की स्क्रीन अर्थव्यवस्था, सिनेमा, डिजिटल क्रिएटर्स, खेलों में दर्शक अनुभव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कॉपीराइट सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अन्वेषण निदेशक ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि E20 पेट्रोल आयात को काफी हद तक कम कर आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद कर सकता है। श्री सिन्हा ने अहमदाबाद में ONGC जलाशय अध्ययन संस्थान में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2027 के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में महानिर्वाण रोड मास आर्ट सोसाइटी के दुर्गा पूजा से पहले के कार्यक्रम में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में कोलकाता में 15 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। ये छापेमारी धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की जा रही है। निदेशालय के अनुसार मास आर्ट ने खुद को यूनेस्को द्वारा प्रायोजित संस्था बताकर लोगों से फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में पैसा इकट्ठा किया और इसका इस्तेमाल निजी हितों के लिए किया। पूर्व मंत्री इंदिरा नील सेन और उनके करीबी सहयोगी सहित कई लोग और संस्थाएं इस मामले से जुड़ी हुई हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल, डिप्टी कमांडिंग जनरल USARPAC ने कल जनरल धीरज सेठ COAS से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की और कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी बातचीत की। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ाने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान और कुमकुम मोहद अनिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला रिकर्व के प्री क्वार्टर फाइनल में कुमकुम मोहद

अनिल ने बांग्लादेश की साइमा सलाहउद्दीन को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय टुकड़ी ने कल महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक जीता। शूटिंग में देश के पदकों की संख्या 13 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हवस् त श्रोता, रूपम कुमारको स्वरमा रहेको यस गीतसँगै अब आजलाई यतिमा नै पूरा हुन्छ बंगला संगीतको कार्यक्रम। सुन्दै हुनुहुन्छ आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्र एफएम 103.5 मेगाहर्ज। र अबको केही बेरमा समप्रसारण गरी सुनाइरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दी समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: hectares, 140 elephants were recorded within its boundaries. The sanctuary was once home to hundreds of elephants, but they abandoned the area due to increasing human activities and land encroachments. However, the eviction of these enclosures and a strong emphasis on restoring greenery through afforestation have helped restore the ecological balance of the forest. As a result, herds of elephants are now being seen in those areas where they had not been spotted for many years. With Rajat Bharadwaj from Sonitpur, Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
1: At the Asian Games 2026, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win a gold medal in the women's trap individual event. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Hooda and Ankush Panghal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish. In the men's javelin throw, Yashveer Singh won the silver medal, while Rohit Yadav claimed bronze. India has won a total of 48 medals at the Asian Games 2026. The current tally includes 5 gold, 21 silver and 22 bronze medals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says border standoff resolution has helped improve India-China ties. India emerging as a major aviation hub and on the way to become the world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. India and Saudi Arabia review cooperation in defense, security, trade, investment, energy and technology on sidelines of AIIB annual meeting in Doha. Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. And in Asian Games 2026, Neeru Dhanda scripts history with India's first individual Asian Games gold at Women's Individual Trap event. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा

0: सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
2: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
3: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
2: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
4: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है। महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
5: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूँ कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रुपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
6: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रुपाय वन्यजीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज

0: किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज गुवाहाटी।
1: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज लगायत दार्जिलिङको एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज र प्रसार भारतीको वेब्स ओटीटी प्लेटफर्म अनि न्यूज अन एआईआर एपमा श्रोताहरूले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्र र समय अहिले अपराह्न 4 बजिरहेछ।
1: टिकुजी 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
2: दे रे भाई,
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही।
0: प्रस्तुत छ कार्यक्रम घर संसार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉ. जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की है। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से अलग सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में चल रही है। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी देंगे। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है, जबकि राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। जिनेवा प्रेस क्लब में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कश्मीरी नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र के दौरान यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोकतांत्रिक

0: शासन प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय स्वामित्व आवागमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के शासन को सुनिश्चित करने की मांग की गई। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया है। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक जीते। भारत 5 स्वर्ण, 21 रजत, 22 कांस्य सहित 48 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 243 अंक गिर कर 72,529 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार पछि पुनः स्वागत गर्दछौ एफएम 103.5 मेगाहर्जको तरंगमा आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रमा। श्रोताहरूले हामीलाई दार्जिलिङ एफएम 100.2 मेगाहर्ज, न्यूज अन एयर एप साथै ओटिटी वेब प्लेटफर्म मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समय अहिले 5:05 भइरहेको छ र म यहाँहरूको साथमा छु सुनिल। श्रोतागण, अब समय भइरहेको छ आज हाम्रो तेस्रो अधिवेशनको र सुरु गर्न लागिरहेका छौँ फौज श्रोताहरूको निम्ति कार्यक्रम जय जवान।

फिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

मंदिर, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40
2: प्रादेशिक समाचार वंदना राय बाटा सुन्नो होस्ट

0: श्रोतागण सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम लोकलहरी र अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम सुर सङ्गम र यहाँहरूलाई सुनाइरहेका छौँ रीता गिरीको आवाजमा केही आधुनिक गीतहरू। पहिले सुन्नुहोस् यो छोटो सन्देश।
1: इसे नजरअंदाज ना करें।
2: डेंगू या मलेरिया दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं।
1: डेंगू और मलेरिया में कंपकंपी के साथ बुखार आना, पसीना आना, सिरदर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
2: ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा न ले, तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाएं और डॉक्टर की सलाह लें।
1: घर के आसपास जमा पानी साफ करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छरों को पनपने से रोकें।
2: जागरूक रहें, मच्छर जनित बीमारियों से बचाव करें।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।

0: नमस्कार श्रोताओं, हमारे आज की रेडियो रिपोर्ट में। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर से आकाशवाणी खरसांग में हिंदी पखवाड़ा दिवस का पालन किया जा रहा है। 21 सितंबर 2026 में स्वरचित कविता पाठ की प्रतियोगिताएं रखी थी और 22 सितंबर 2026 में आशु भाषण प्रतियोगिता और 24 सितंबर एवं 25 सितंबर को अंताक्षरी प्रतियोगिता रखी गई थी। श्रोताओं, आज 29 सितंबर के दिन आकाशवाणी खरसांग में हिंदी पखवाड़ा दिवस कार्यक्रम का समापन किया गया। आकाशवाणी खरसांग में हिंदी पखवाड़ा समापन दिवस में उपस्थित थे कार्यक्रम सहायक निर्देशक श्री राजीव सुब्बा जी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी सुश्री निर्मला अग्रवाल और हमारे आज के हिंदी पखवाड़ा समापन कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे श्री ललित सेवा जी।
1: आज के समापन समारोह में हमारे निमंत्रण को स्वीकार के अपनी व्यस्तता को छोड़कर आकाशवाणी खरसांग के हिंदी दिवस में जो निमंत्रण भेजा था आपने सर स्वीकार करके पधारे, उसके लिए हम सभी आकाशवाणी खरसांग की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं।
0: कार्यक्रम सहायक निर्देशक राजीव सुब्बा जी ने स्वागत भाषण इस प्रकार दिया।
2: धन्यवाद ललित जी, आज के इस समापन समारोह में उपस्थित हुए जितने भी हमारे कर्मचारी लोग हैं, हमारे अस्थायी कर्मचारी लोग, सभी को हम स्वागत करना चाहते हैं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए निर्मला अग्रवाल जी, हम वहाँ को सहृदय स्वागत करते हैं। जो आज का ये समापन समारोह के साथ आज एक पुरस्कार वितरण भी आज यहाँ पर होगा। जितने भी प्रतियोगी लोग, सहकर्मी लोग, हमारे जितने भी आज उपस्थित हुए, उन सभी को हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। तो साथ ही साथ हमारे जो अस्थायी कर्मचारी लोग हैं जिन्होंने आशु भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया था, अंशग्रहण किया था, उन लोगों को भी हम शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहेंगे और साथ ही साथ ये उनको एक आश्वासन देना चाहेंगे कि अगले वर्ष हम उनको आशु भाषण प्रतियोगिता में सीमित न रहकर उनके लिए भी अन्य विधाओं में भी कुछ ना कुछ किया जाए। स्वरचित कविता पाठ रहेगा, अंताक्षरी रहेगा, तो हम प्रयत्न करेंगे कि अगले साल वो लोग इस अन्य विधा में भी अपना प्रतियोगिता में कुछ ना कुछ वो अपना दे सके, ये आश्वासन देना चाहेंगे। इसी के साथ मैं छोटा सा वक्तव्य शेष करना चाहूंगा। धन्यवाद
0: सभी। मुख्य अतिथि सुश्री निर्मला अग्रवाल जी ने भी अपना वक्तव्य रखा।
3: उपस्थित मेरे भाई बहन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर जितने भी शायद उपस्थित हैं, सभी को कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य मिला है। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं चाहती हूँ अगले वर्ष और धूमधाम से मनाई जाए। और अभी अभी पुरस्कार वितरण करते समय पता चला कि ज़्यादातर इस बार नारियों ने मोर्चा मारा है, वो भी किसमें? स्वरचित कविता में। वास्तव में सभी ने छेड़ा है यहाँ पर नारी शक्ति, ये सब वास्तव में वो नहीं है। मेरे हिसाब से नारी कोमल होती है, उनमें भावनाएं ज़्यादा होती है, इसीलिए शायद वो बहुत अच्छी कविता लिख पाती है। शायद उन्होंने ज़्यादा अच्छा किया होगा। हिंदी पखवाड़ा ऐसा पखवाड़ा है जिस समय आप सब इतने पूरे साल जो आप कठिन कार्य करते हैं, दिन भर आप खटनी करते हैं, उसमें से कुछ समय अपने लिए निकाल कर अपने लिए कुछ कर पाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और अच्छी तरह से अपनी कार्य क्षमता को दर्शाने में समर्थ रहते हैं। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उनकी क्या सोच है, यही इन सब कार्यक्रमों से हम लोग जान पाते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही साथ बधाई। इतना कहते हुए मैं अपना वक्तव्य बंद करती हूँ।
0: सहायक अभियंत्रण सहायक विभाग से हरिश्चंद्र जी ने अपना वक्तव्य रखा।
4: आज हिंदी पखवाड़ा के सम्मान समारोह पुरस्कार वितरण समारोह में आज के मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कर रहे हमारे सहायक निदेशक महोदय, तमाम यहाँ बैठे हुए हमारे संस्थान के कर्मचारीगण, निश्चित तौर पर हिंदी राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा है और सुभाष चंद्र बोस ने भी इस संबंध में हिंदी को आगे बढ़ाने की बात कहे थे। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हिंदी और हिंदुस्तान भारत को एकमात्र जोड़ने वाली भाषा की संज्ञा दिए। तो जो आज हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया गया, मैं यही चाहूँगा कि ये अनवरत चलती रहे। ये हमारी भाषा है, राष्ट्र की भाषा है, और मुझे खुशी हो रही है कि ये हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरा मातृभाषा है और सबों के लिए होनी चाहिए। क्योंकि ये जब आप यहाँ से निकलते हैं, भाषा हमारी कुछ भी होती है, लेकिन जब हम दूसरे प्रदेश जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेके आप अरुणाचल प्रदेश कहीं भी जाते हैं, तो आपको एक भाषा होती है जो आप एक दूसरे का अंदर का उद्गार व्यक्त कर पाते हैं, वो है हिंदी। तो मैं इस अवसर पर मैं सबों का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारती, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम निष्पादक लेखनाथ राय जी ने अपना वक्तव्य रखा।
5: यहाँ उपस्थित कार्यक्रम में उपस्थित सभी को नमस्कार, और आज के कार्यक्रम का अतिथि महोदय और कार्यक्रम सहायक निदेशक राजीव सुब्बा जी को भी मेरे ओर से अभिवादन, और ललित जी को धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर दो शब्द रखने के लिए मौका दिया है। ये पखवाड़ा है तो पखवाड़े के बारे में थोड़ी बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पखवाड़े के बारे में पता ना हो, इसीलिए मैं ये जो हिंदी पखवाड़ा हम हर साल 14 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरी भारत में जहाँ जहाँ हमारी संघ सरकार की कार्यालय हैं, कार्यालय उसकी अधीनस्थ कार्यालय हैं, उस सभी कार्यालय में ये कार्यक्रम करते हैं। अलग अलग विधाओं में कार्यक्रम रखी जाती है। पखवाड़ा का खास माने मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पखवाड़ा भी बोल देते हैं। पखवाड़ा का मेरे समझ के हिसाब

0: हिंदी में जो 15 दिन वाली कार्यक्रम होती है उसको पखवाड़ा बोला जाता है, तो ये हमारे जो हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम क्यों किया जाता है इसका थोड़ी बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो संघ सरकार, केंद्र सरकार भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संघ सरकार की जो आधिकारिक भाषा है, राजभाषा बोलता है जिसको, वो हिंदी है। वैसे तो हमारी संविधान के हिसाब से और भी राजभाषा है इस देश में हिंदी, लेकिन संघ सरकार की राजभाषा है, उसको छोड़ के बाकी भाषा भी है जो राजभाषा है, जैसे हमारी नेपाली भाषा भी राजभाषा है तरह, लेकिन वो संघ सरकार की नहीं, लेकिन हमारे जो प्रांतीय हिसाब से जहाँ पर उसका प्रशासनिक हिसाब से उसको प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बंगाली भी राजभाषा है, वो बंगाल में, बंगाल का राजभाषा है, बंगाल अलग एक राज्य है, उसी तरह से पंजाबी है, पंजाब की राजभाषा है, मराठी है, महाराष्ट्र का राजभाषा है, महाराष्ट्र सरकार उसको राजभाषा के हिसाब से प्रयोग करते हैं, तमिल में तमिल है, लेकिन अपने अपने प्रांत में, अपने अपने राज्य में अपने अपने राजभाषा है, प्रशासनिक हिसाब से उसको प्रयोग किया जाता है, लेकिन पूरी देश में, पूरे हमारे राष्ट्र में हिंदी ऐसी राजभाषा है जो सभी संघ सरकार की कार्यक्रम, कार्यालय, जितने भी प्रशासनिक कार्यक्रम होता है उसमें इसको संवैधानिक हिसाब से प्रयोग किया जाता है। तो ये है हिंदी के बारे में, और इसको हिंदी को राजभाषा के रूप में कैसे कार्यान्वयन करेंगे, क्योंकि जो इस देश का जो पृष्ठभूमि है वो बहुत व्यापक है, बहुत विविधता है, इसके कारण केंद्र सरकार के ओर से हमें हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदी भाषा की ओर आकर्षित करने के लिए और इसको इससे प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए हमें ये कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी सीखने को प्रोत्साहन करते हैं। तो इसके लिए हम मेरे ओर से सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम हिंदीतर भाषी होने के नाते भी ऐसे ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम हिंदी जानने के लिए, सीखने के लिए और हिंदी को किस तरह से अपने हिसाब से कार्यान्वयन करने में अपना योगदान दे सकें वो कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम फिर भी खुश हैं और मुझे लगता है सभी साथी भी खुश रहते हैं, क्योंकि सबको इस हिसाब से हम कोशिश करते रहेंगे कि हिंदी को किस तरह से हम कार्यान्वयन करके अपने राष्ट्र को थोड़ी योगदान दे सकें, इसमें हम ध्यान रखेंगे। तो इसी बात के साथ मैं मेरा ये बात यहीं पर ख़त्म करूंगा। सभी को धन्यवाद, ललित जी को भी धन्यवाद, ललित जी को भी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, स्वरचित कविता पाठ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया कार्यक्रम अनुभाग से श्रीमती योजना मोरा, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया श्री उमेश दर्जी, तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया श्री मनन तामंग ने। इसी तरह श्रोताओं, एमटीएस समूह से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया श्री लीना घोष, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया श्रीमती संगीता थापा, तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया संतोषी राव ने। इसी प्रकार श्रोताओं, आशु भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया कार्यक्रम अनुभाग से श्रीमती योजना मोरा, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया श्री मनन तामंग, तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया श्री चंद्रलाल ब्राह्मण जी ने। इसी तरह से अंताक्षरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आया परवाना समूह से। इस समूह में सम्मिलित है श्री पवन डुप्पा, श्री संजीव चक्रवर्ती, श्री उमेश दर्जी और संजय राव। श्रोताओ, हिंदी पखवाड़ा दिवस कार्यक्रम समापन का धन्यवाद ज्ञापन दिया गया मानव उद्घोषक उमेश दर्जी द्वारा।
2: आप सबको मेरा ये नमस्कार। आज अंतिम दिन मुझे झेलने के लिए भी आपने इतने दिनों से मुझे धन्यवाद के लिए, तो इसलिए भी आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज धन्यवाद के अंतिम क्रम में मैं सीधा धन्यवाद यहाँ जाता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज का जो प्रमुख अतिथि महोदया आदरणीय निर्मला अग्रवाल जी, उनको आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना कम समय में भी उन्होंने यहाँ आके आज का हम लोग का कार्यक्रम को इतना गरिमामय बना दिया, ऐतिहासिक बना दिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग धन्यवाद देते हैं हम लोग आकाशवाणी खरसांग के कार्यक्रम प्रमुख

0: श्री श्री राजीव शुभ जी को प्रत्येक कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित होके प्रतियोगियों को उन्होंने प्रेरणा प्रदान की, साथ में वो स्वयं भी प्रतियोगिता में सहभागी होके कार्यक्रम को और गरिमा बढ़ाया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हम विशेष रूप से आप सभी प्रतियोगियों को धन्यवाद देते जिन्होंने इतने दिनों से ये कार्यक्रम संचालन होने में, समापन होने में, सफल होने में आप लोग ने जो अपना सहभागिता दिया, ये अस्मरणीय है। ऐतिहासिक के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद हम ललित भाई को भी देते जिन्होंने इतना बड़ा सुंदर कार्यक्रम शुरू से इसको संचालन भी किया और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन भी किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हम लोग प्रेस मीडिया का, जो हम लोग का मित्र लोग यहाँ आए हुए जिन्होंने ये कार्यक्रम पूरा कवर करके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ कवर किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते धन्यवाद परोक्ष और अपरोक्ष रूप में जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। आप सभी को धन्यवाद देते धन्यवाद आप एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देते धन्यवाद।
1: दोस्तों आशा करती हूँ हमारे आज का रेडियो रिपोर्ट आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आपकी दोस्त सुरक्षितामन को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: एफएम 103.5 मेगाहर्जमा हामी आकाशवाणी खरसाङबाट बोलिरहेका छौँ। अब गरहल कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
3: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
5: India rejects the unwarranted references.
6: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
5: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
7: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
1: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
8: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
9: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
8: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
10: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपए मिलता है।
8: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु

0: तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Defense Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defense preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Heavy rainfall conditions likely over interior Karnataka, Keralam and northeastern states tomorrow. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4x400 meter relay. Neeru Dhanda wins gold in women's trap individual event. Overall medal tally rises to 53, including 6 gold, 21 silver and 26 bronze. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. More from our correspondent.
3: The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interest. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. The defense minister noted that the presence of Indian warships in South China Sea,

0: 한.
1: 예, 아카시마니해 प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में पशुपालन बीमा के डिजिटलीकरण की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
2: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रामीण पशुधन क्षेत्र में पशु बीमा पोर्टल के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह मौजूद हैं। एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: एसपी सिंह जी, किस तरह से देखते हैं जो कल ये पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो ग्रामीण पशुधन क्षेत्र में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप समझते हैं?
3: देखिए, इस देश में पशुओं की संख्या और किसानों की समस्याएं, एक तरह से समझिए कि जितनी ज्यादा संख्या है और पशुओं की देखभाल और जो उनकी सुरक्षा का प्रबंधन और किसानों की समस्याओं का निदान, एक ही मंच पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराने की यह एक व्यवस्था है। और ये डिजिटल व्यवस्था होने से पशुओं का पंजीकरण ऑनलाइन होने लगा है, बीमा कवरेज आसानी से मिल जाएगा, सभी प्रक्रियाएं एक ही जगह पर पूरी हो जाएंगी, पारदर्शिता और प्रक्रिया तेज हो जाएगी, बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी, बिना दावों के क्लेम और निपटान तेजी से होगा, धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होगी, रियल टाइम निगरानी की जा सकती है, किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो योजनाओं की वास्तविक समय पर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से और किसान की ओर से मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जा सकती है, डेटा प्रबंधन की कार्यप्रणाली में सुधार करने में सहूलियत होगी, सरकार और विभागों को सही स्थिति से समझ में आएगी। जो पूरा पोर्टल बनाया गया है, कह सकते हैं कि पशुपालकों के अनुकूल, उनकी सुविधा को, उनकी सहूलियत को देखते हुए इस तरह का बनाया गया है। इस देश के एक छोर से दूसरे छोर के जो बहुभाषी लोग हैं, किसी भी भाषा में वो उस पर अपनी जानकारी लेना चाहे या देना चाहे, तो हिंदी अंग्रेजी समेत करीब अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाएं भी उपलब्ध हैं उस पोर्टल पर। आप जिस भी भाषा में जाकर अपनी बात कहना चाहें या अपनी जानकारी या अपना आंकड़ा उस पर डालना चाहें, ये सब आपको उपलब्ध हो जाएगा।
2: जी,
3: सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है किसानों को, वो बीमारी या दुर्घटना से जो होने वाले नुकसान होते थे किसानों को भारी स्तर पे, पशुपालकों को इससे निजात मिलेगी, मुश्किलें नहीं होगी और उनके जो आर्थिक झटका लगता था, मुश्किल आती थी, वो एक तरह कह सकते हैं एक रक्षा कवच मिल जाएगा, जोखिम से बचाव हो जाएगा। दूसरी चीज की पशुपालकों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन होते थे पशु, उनसे वो सुरक्षा जब उन्हें मिलेगी तो उनकी भी सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी,
2: जो पशुपालकों को इस तरीके से जो सुरक्षा कवच की आपने बात की है, ये उनकी आर्थिक स्थिति को कितना सहारा दे पाएगा या सहयोग कर पाएगा?
3: ऐसी व्यवस्था है कि किसान इस देश में, आप समझिए कि 70% जो पशुपालक हैं, उनके पास देश का 80% जो पशु हैं उनके पास हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, मझोले किसान हैं या भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास कुछ भी और साधन नहीं है गांव में, वो रोजी रोटी और लोगों के यहाँ मजदूरी, खेतिहर मजदूर जिन्हें आप कह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। और अगर मान लीजिए आजीविका के इस साधन पर कोई संकट आता है या उस पर कोई मुश्किलात पेश आती है, उनका पशु बीमार होता है, उनमें दूध देने की क्षमता घट जाती है या पशु दुर्घटना बस किसी बीमारी से या कैसे मृत्यु हो जाती है, ऐसे में तो उसके बेचारे की सारी रोजी रोटी ही खत्म हो जाएगी। सरकार ने जो ये रक्षा कवच उन्हें दिया, मैं इसलिए उसे रक्षा कवच कहूंगा, उससे उनको बहुत फायदे होंगे, उनकी मुश्किलात कम होंगी।
2: इस बीमा से, जिस तरह से आपने बताया कि बीमारी, क्या इसमें प्राकृतिक आपदा को भी शामिल किया गया है या जो महामारी से संबंधित दिक्कतें आती थी उसको भी इसमें शामिल किया गया है?
3: देखिए, ऐसा है कि पशुओं को किसी भी तरह से हानि पहुंचती है, ये सबका सारा कुछ एक साथ जोड़ दिया गया, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सरकार ने इसका सारा भार खुद उठाने का दायित्व लिया है, अपने कंधे पर लिया है, सरकारी खजाने से ही सब कुछ दिया जाएगा। यानी पशुपालक को किसी भी स्तर पर कहीं भी किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, संकट उसके ऊपर न आए, जोखिम से उसको बचाव हो, इसके लिए सरकार ने बाकायदा सारी सुविधाएं दी हैं। अब आप समझिए, यहाँ तक जितने का पशु होगा उसके जो आधार बनाया गया है, किस तरह से पशुओं का बीमा किया जाएगा, पशुओं का बीमा किया जाएगा उनके मूल्य के हिसाब से, वो कितनी उनकी बाजार का उनका मूल्य क्या है, मूल्य के हिसाब से जो उनका बीमा बनता है, बीमे पर जो प्रीमियम बनता है, प्रीमियम का 85% हिस्सा सरकार वहन करेगी, मात्र 15% बहुत नॉमिनल होगा, बहुत कम धनराशि होगी प्रीमियम के तौर पर जो किसान को देनी होगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसान की सुरक्षा का पूरा प्रबंध हर तरीके से, चाहे वो प्राकृतिक तौर से हो या कृत्रिम तौर पर से, कैसे भी अगर दुर्घटना बस की मौत होती है या उसको कोई प्राकृतिक ऐसी कोई आपदा आती है जिसमें बीमारी कोई लग जाती है, सामूहिक संक्रामक तरह के ढेर सारे रोग पशुओं में आते हैं। अभी एक हाल के वर्षों में आपने देखा एक बड़ा रोग संक्रामक चल रहा है लंपी, जिससे उनकी क्षमता घट जाती है, दूध देने की क्षमता घट जाती है, उत्पादकता घट जाती है। तो ऐसे में अगर पशुओं की सुरक्षा का प्रबंध नहीं होगा, उनको इस तरह का बीमा का कवच नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तो सबसे बड़ा संकट उन किसानों पर आएगा, उन पशुपालकों पर आएगा जिनके पास रोजी रोटी का एकमात्र साधन है पशुपालन।
2: आपने बताया कि जो इसका प्रीमियम आएगा उस प्रीमियम का 85% हिस्सा सरकार वहन करेगी और 15% हिस्सा ही पशुपालकों को या पशुधन रखने वाले किसानों को वहन करना होगा। इसमें लाभार्थी का सत्यापन करना या ये जो इस तरह की जो पॉलिसी ली जाएगी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह कितना आसान होगा या उसके लिए कौन से प्रयास करने होंगे एक पशुधन इस्तेमाल करने वाले को या किसानों को।
3: देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक के जितने कमजोर कड़ी थी, जहाँ जहाँ से मुश्किलें पेश आया करती थी, उन सबको किसी भी तरह के घपलेबाजी, किसी तरह का भ्रष्टाचार, किसी तरह का मुश्किल ना आए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। ये जो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है पशुपालकों की, देखिए क्या है, इसमें पशुपालक किसान, पशुपालन विभाग, बीमा कंपनियां और पशु चिकित्सक, जो लोकल लेवल पे हर ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक में क्या पंचायत स्तर पर वेटरनरी के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये सबका एक मिला जुला मंच है। इस मंच पर हर तरह की सुविधा दी गई है, जैसे हर पशु के कान में एक टैगिंग की जाती है, ईयर टैगिंग बोलते हैं, उनके कान में एक टैग लगता है 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का ईयर टैगिंग जो लगाया जाएगा वो धोखाधड़ी रोकने और पशुओं की सटीक पहचान के लिए इसे भारत पशुधन डेटाबेस के तौर पर से इसे लिंक किया गया है, ताकि कोई गड़बड़ी न करे किसी भी तरह का, कोई और पशु दिखाकर, किसी और पशु के मरने की सूचना देकर किसी तरह की बीमा कंपनियों के साथ धोखाधड़ी न हो सके। सरकार ने यह पुख्ता प्रबंध किया है और इसकी जो क्लेम लेने की है, मान लीजिए किसी का पशु मरता है तो उसे कोई मुश्किल पेश न आए तो उसे ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा और ये निपटान की प्रक्रिया इतनी जल्दी होगी कि 21 दिनों के अंदर ज्यादातर दावे पूरे कर लिए जाएंगे, यानी उनके क्लेम का पैसा जो उनको मिलना है वो मिल जाएगा, क्योंकि उनके साथ पशु के मरने की सूचना कौन देगा। ये उसी प्लेटफॉर्म पर जो वेटरनरी का डॉक्टर, जो उसका स्टेक होल्डर है, जो उसका एक पक्षकार है, जब बीमा होगा तो ये बीमा कंपनियां, किसान, पशुपालक और ये जितने भी पार्ट हैं, ये सब एक साथ मिलकर प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी डालेंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डालेंगे और उस पर डालेंगे उसकी डेथ सर्टिफिकेट, ये जारी करेगा वो डॉक्टर, जारी करने के 21 दिन के अंदर, हो सकता है इससे पहले भी उसका दावा मिल जाए।
2: आपने ये तो बात करी कि अगर किसी तरह से उसको बीमारी होती है, किसी तरह से दुर्घटना होती है, क्या प्राकृतिक आपदाओं से भी इन पशुधन को बचाने के लिए इस तरह की बीमा का सुरक्षा कवर मिलेगा।
3: सरकार द्वारा जो ये किया गया है, असमय मृत्यु से होने वाली आर्थिक, मतलब जो किसानों को मिलेगा, हाँ ये दोनों को मिलेगा।
2: मतलब इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी, अगर जैसे कि आजकल बहुत सारे भारतीय क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप,
3: बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, भूस्खलन हो जाए, कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाए, तो ऐसे समय में भी ये इसका प्रबंध किया गया है कि उसके उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बीमा कंपनियों के थ्रू सरकार करेगी।
2: पशुधन का मूल्यांकन करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या उस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे सकेंगे।
3: देखिए क्या है, इसके लिए भी सरकार के पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर पशु की खरीद बिक्री भी होती है। एक प्लेटफॉर्म और है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पशुपालन मंत्रालय के पास, विभाग के पास, और हर डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं, हर स्टेट में कह सकते हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां से, क्योंकि पशुओं की खरीद बिक्री का एक बड़ा मुश्किल होती थी कि अगर मान लीजिए हम 500 किलोमीटर दूर से कोई पशु खरीदते हैं और उसको हम कहीं और ले जाना है तो जो उसका ढुलाई और बहुत मुश्किलें पेश आती थी, तो उस पशु के स्वास्थ्य के बारे में, उस पशु की प्रोडक्टिविटी के बारे में, में, उस पशु के क्वालिटी के बारे में, वो किस ग्रेड का है, वो किस प्रजाति का है, ये सारी चीजें वेटनरी का डॉक्टर प्लस वो जो किसान के यहाँ दूध देने की क्षमता कितनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितनी बार वो बच्चा दे चुकी है, ये सारी डेटा बेस ऑलरेडी होगा, उसके आधार पर बाजार मूल्य तय किया जाता है और उसी मूल्य को आधार बनाया जाएगा।
2: इस पोर्टल का उपयोग किस तरह की किया जा सकता है, क्या सिर्फ कंप्यूटर पे ही, या इसमें कहीं कोई मोबाइल ऐप भी है जिसके द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है?
3: अभी स्टार्टिंग में इसको यार पोर्टल पर ही इसका उपयोग करेंगे
2: जी।
3: जो आपके सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं इस तरह के, सीएससी जिसको कहते हैं ना, उसके मार्फत आप जाकर के इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अपने पशु को आपको उस पर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि जो बीमा कंपनी है बिना रजिस्ट्रेशन के तो देगी नहीं। आपके पशु का जो बीमा कंपनी है जो देगी आपको क्लेम देने वाली है, या जो बीमा देगी, जो प्रीमियम वसूलेगी सरकार से या किसान से, वो कंप्लीट जानकारी रखेगी और आपको अपने सामुदायिक सीएससी केंद्र से करके उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, एक काम आपके यहाँ हो सकता है कि आपके ऐप अगर आप उस पर डाउनलोड कर लें, मैं लगता आने वाले दिनों में जल्दी ही इसे ऐप के थ्रू भी संचालित किया जाने की व्यवस्था की जाए जी।
2: किसानों की जो आय आपने सुनिश्चित करने की बात करी, तो क्या इसके लिए सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए क्या कोई और भी उपाय किए जिससे इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके और सभी पशुपालकों को या किसानों को इसका लाभ मिल सके?
3: सरकार के पास सारा डेटा है, क्योंकि जो सरकार लोगों को भेजती है तरह तरह की सूचनाएं मौसम के बारे में, खेती किसानों के बारे में देती है, तो ज्यादातर पशुपालक किसानी खेती से जुड़े हुए हैं, उनके सबके डेटाबेस सरकार के पास है, इनकी इन्फॉर्मेशन लगातार जाती रहती है और अब उसी के थ्रू SMS के थ्रू सबको ये बराबर जानकारी दी जाएगी और दी जा रही है हमें लगता है। और इसके अलावा जो प्रचार और के संसाधन है, जो हम और आप बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के थ्रू, ये हम और आप बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं उनके ये जानकारी देने के लिए ही, उन्हें जागरूक बनाने के लिए ही, कि आपका जो बहुमूल्य पशु है, जो आपके पास ऐसे कीमती पशुओं की मौत हो जाने या उनके नुकसान हो जाने या उनकी उत्पादकता क्षमता घट जाने पर उन्हें नुकसान न हो, इस तरह की जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि जैसे उनकी फसलों के लिए बीमा योजना है, अगर फसल पर कोई नुकसान आ जाता है तो उन्हें कैसे बीमा प्राप्त हो जाता है, ठीक ऐसे ही उनके पशुओं के बारे में सारी जानकारी, क्योंकि 12 डिजिट का टैग लगा है पशु के कान में, यह टैग के थ्रू उसको पता चल जाता है कि पशु की लोकेशन क्या है, पशु सच में मर गया है या नहीं मरा है, या किसके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है, तो ये सारी जानकारी किसान को उसी के थ्रू दी जाएगी, डिजिटली ही आसानी से पहुंचा जा सकता है किसान तक।
2: इसमें कुछ रियल टाइम मॉनिटरिंग या निगरानी व्यवस्था की भी सुविधा
3: के लिए ही जो 12 का यह टैगिंग की गई है, उसका मायने यही है, वो एक कह सकते हैं आर्यन टैग है, यही बैठ के आप पता कर सकते हो कि उस पशु की लोकेशन क्या है, उस पशु की बराबर आपको स्टेटस देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पशु बीमार होता है तो इसकी जानकारी भी उसी टैग के थ्रू आपके अपने ऐप पर लगातार देनी पड़ेगी या सीएससी के थ्रू देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अचानक आपका पशु मर गया, आपने एक दिन बताया कि मैं आज मर गया, जबकि वो मान लीजिए 15 दिन से 20 दिन से महीने से 2 महीने से बीमार चल रहा है, उसकी क्षमता घट रही है, उसका इलाज नहीं हो रहा, नहीं, ये सब आपको लगातार करना पड़ेगा, इसकी सूचना देनी पड़ेगी और वेटनरी डॉक्टर को लगातार संपर्क में रहना होगा, उसको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट को ही आधार बनाया जाएगा। रियल टाइम तभी तो पता चलेगा कि पशु की स्थिति क्या है, किसी भी बीमा कंपनी को जो भुगतान करेगी क्लेम वो कैसे दे पाएगी, इसलिए किसान बराबर जानकारी देता रहेगा, अगर उस पशु किसी तरह के संकट में है तो इसकी भी जानकारी आपको उसको देनी पड़ेगी।
2: आमतौर पर काफी जटिल व्यवस्था लगती थी, कि उम्मीद करते हैं कि जो पशुपालक हैं या जो किसान हैं या सीमांत किसान हैं जिनका मुख्य आय का स्रोत पशुपालन है, तो उनके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था इस बीमा पोर्टल के माध्यम से हो सकेगी।
3: ये जो व्यवस्था की गई है, लाभार्थी जो अभी दिया जा रहा है कि प्रीमियम तो सिर्फ 15% ही देना पड़ेगा पशुपालक को, बाकी सरकार वहन करेगी, इसके लिए एक सीमा तय की गई है। इसकी सीमा यह है कि अगर आपके पास गाय या भैंस, अधिकतम 5 मवेशियों का ही आप ये करा सकते हैं,
2: अधिकतम संख्या भी इसमें निर्धारित की गई है,
3: अधिकतम सीमा इसकी तय की गई है। और इसका जो भुगतान की व्यवस्था की जाएगी वो 60% केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी, तो ये व्यवस्था की गई है।
2: एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे सभी श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत में पशुपालन बीमा के डिजिटलीकरण की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दुनिया की भीड़ में कभी कभी सारे चेहरे अजनबी हो जाते हैं, ऐसे में सीधी सादी सड़क टेढ़ी हो जाती है, रास्ते नजर नहीं आते, चेहरे पर घिराई उदासी परेशान करती है, जिंदगी को मुट्ठी में बंद कर उससे बतियाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी रेत की मानिंद फिसलती जाती है, ऐसे में हम जिंदगी को बुलाते हैं, मनहार करते हैं।

रूठी हुई जिंदगी जब मान जाती है तो लम्हे मोती से चमक उठते हैं, दिल खिल जाता है, आंखों में प्यार बेशुमार होता है, खुशियों का खजाना बन जाती है जिंदगी जब खुश होती है जिंदगी।

कुछ लम्हे कभी बूढ़े नहीं होते, उन लम्हों पर अतीत की गर्द नहीं छाती, न ही वो धूमिल होते हैं। वो लम्हे ताजी धुली आंखों की तरह चमकते रहते हैं। वो लम्हे बारिश में धुली पत्तियों की तरह हमेशा

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की इनायत सबको नहीं मिलती, जिन्हें मिलती है मोहब्बत उनकी जिंदगी फूलों की झालर सी सजी होती है। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब मिल जाता है किसी का भला सा साथ। नदी में तैरती कश्ती पर दो चाहने वाले एक साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। वो कांटों की परवाह नहीं करते। खुशनसीब होते हैं जिनकी जिंदगी मोहब्बत से भरी होती है।

प्यार की खुशबू से जिंदगी लबरेज हो गई। एक रोज हर मुलाकात में फूलों का खिलना था, हर बात में मुस्कान। माँ ने सिखाई थी एक बात, एक गठान दी थी। लगता था अब कभी कुछ टूट नहीं सकता, लेकिन हर वक्त ठहरा नहीं। धीरे धीरे रिश्ते बदलते गए, शब्दों की जगह खामोशी ने ले ली और समझ की जगह ना समझे ने। माँ ने जो गठान लगाई थी वो जुड़ने के लिए थी, लेकिन अब टूटने की जिद करने लगी। सिक्के अब भी जेब में थे पर हाथ कांपने लगे थे उन्हें खर्च करने से पहले।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है। कुछ दर्द भरी स्मृतियां होती हैं, कुछ खुशगवार। कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान हो जाता है। कुछ दर्दीली स्मृतियां हमें सहलाती भी हैं। कुछ प्यारी स्मृतियां हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं प्यार भरे गीत।